0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि मानव अधिकार क्या है और ये क्यों अहम है? मानव अधिकार वे मूलभूत और जन्मजात अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल इंसान होने के कारण प्राप्त होते हैं, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, भाषा या राष्ट्र कोई भी हो। ये अधिकार किसी सरकार या कानून द्वारा नहीं दिए जाते, मनुष्य के जन्म के साथ ही वे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता, कोई भी सत्ता या सरकार इसे समाप्त नहीं कर सकती। सभी मानव अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक अधिकार को पूरा करने के लिए दूसरे का सहयोग जरूरी होता है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। समय और समाज की जरूरतों के साथ उनका दायरा बढ़ता है, जैसे डिजिटल युग में निजता का अधिकार। दुनिया भर में टकराव और युद्ध, इंसानों के बीच असमानता और बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच मानव अधिकारों की अहमियत पहले से कहीं अधिक हो गई है। लेकिन मानव अधिकार क्या है? वे हमारे दैनिक जीवन में किस तरह जुड़े हैं और वे समाज को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए क्यों आवश्यक है? जिनेवा स्थित यूएन मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना श्रमदासानी ने यूएन न्यूज की अंशु शर्मा के साथ एक विशेष बातचीत में उन्हीं बुनियादी सवालों के जवाबों पर रोशनी डालते हुए मानव अधिकारों की मूल अवधारणा, उनके महत्व और आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता को सरल शब्दों में समझाया।
3: रवीना, सबसे पहले ये बताइए कि मानवाधिकारों का मतलब क्या है? मानवाधिकार है क्या?
4: मानवाधिकार एक्चुअली सब कुछ है। रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए, इक्वालिटी स्कूल्स में, काम पे, डिसेबिलिटी राइट्स, कैसे लोगों को ऑब्स्टिकल्स नहीं हो लाइफ में, कि किसी बिल्डिंग में एंटर करना हो, कोई काम करना हो तो उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उनको कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो। इट इज़ ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। कोई अगर कोई जुर्म करता है तो उसको टॉर्चर नहीं किया जाए, अभी उसका भी हक है कि ही इज़ ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। टॉर्चर करने से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, इनफैक्ट आप वापस वो जो साइकिल होती है वायोलेशंस की वो आप दोहरा रहे हो बार बार। तो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स सब कुछ है।
3: मानवाधिकार हर व्यक्ति के लिए हर जगह जी, उसको महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, क्यों महत्वपूर्ण है वो
4: मानवाधिकार? एक्चुअली अगर आपको याद होगा कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया गया था उसकी ड्राफ्टिंग के टाइम पे, हमारी एक थी हंसा मेहता, इंडियन फेमिनिस्ट, जिसने इंसिस्ट किया था कि उसका जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड फ्री एंड इक्वल, जो वो फ्रेज है वो उन्होंने ही डिसाइड किया था कि उसको ऑल ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए, ऑल मेन नहीं होना चाहिए। एलेनोर रूजवेल्ट काफ़ी जो जिसने लीड किया था जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया गया था, उन्होंने बोला था नहीं रहने दो, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स टू पिक, हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को कन्विंस करना है, तो ये चीज़ रहने दो, हम लोग ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल से सेटिस्फाइड हैं। पर हंसा मेहता ने इंसिस्ट किया था कि ह्यूमन राइट्स आपको ठीक से प्रेजेंट करना है, ठीक से लिख के उसको स्पेसिफाई करना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तभी लोग पूछते हैं कि चलो ये सोशल इश्यूज हैं, इनको आप ह्यूमन राइट्स की फ्रेमवर्क में क्यों बोल रहे हो? और ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है जब कोई ये बोलता है कि ये मेरा अधिकार है। तो जैसे 2004 में जब सुनामी हुआ था साउथ एशिया में, तो मैं वहाँ पे गई थी, मैं नागापट्टनम में गई थी, और वहाँ पे काफ़ी चैरिटी वर्क चल रहा था, राइट? काफ़ी लोग सोचेंगे कि चैरिटी वर्क चल रहा है, लोगों जिसके जिनके घर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनको खाना प्रोवाइड करना है, उनको रोटी कपड़ा मकान. पर एक बहुत पावरफुल चीज़ थी, जब मैं एक कैंप में गई थी वहाँ पे लिखा था कि हर परिवार का अधिकार है इतने चावल, इतना आटा, इतनी दाल. दैट कम्प्लीटली चेंजेस द इक्वेशन, क्योंकि फिर लोग ऐसा नहीं है कि वो बेजार हैं, वो जाके कुछ मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं. नहीं, ये उनका अधिकार है, ये खाना, ये पानी, ये रहने की जगह उनका अधिकार है. और वो पूरी इक्वेशन को शिफ्ट कर देता है. तभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करें.
3: तो आप मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में काम करती हैं जिनेवा में, ये कार्यालय क्या करता है, क्या काम है उसका?
4: तो हम लोग 90+ कंट्रीज़ में हैं, एक्चुअली अभी 92 कंट्रीज़ में हैं. और वहाँ पे हम बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ काम करते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन द कंट्री. जैसे समझिए सूडान में अभी वहाँ पे वॉर चल रहा है, पर जब भी किसी जंग में दो पार्टीज होती हैं तो दो वर्जन्स ऑफ द ट्रूथ होते हैं, दो सच्चाइयाँ होती हैं. और हमारा जॉब है कि हम एक्चुअली क्या सच में हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करके और पूरी दुनिया को बताएं कि एक्चुअली ये हो रहा है, जाके डॉक्यूमेंट करके और सबको बताते हो कि क्या हो रहा है. एंड देयर इज नथिंग दैट एनीबॉडी कैन डू अबाउट इट. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब लोग सच्चाई समझेंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे वो लोग सच्चाई समझेंगे, तो फिर दैट कैन प्रोवोक एक्शन. फिर जाके दुनिया भर के लोग देखेंगे कि सूडान में ये हो रहा है, ये कभी नहीं होना चाहिए. वो अपने गवर्नमेंट्स को प्रेशर करेंगे, फिर गवर्नमेंट्स गेट इन्वॉल्व्ड एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी पेज अटेंशन टू सिचुएशंस ऑन द ग्राउंड.
3: पर ज़मीन पर जो लोग हैं उनकी रक्षा कैसे करते हैं आप इस सब में?
4: हर देश का अपना इशू है, तो डिपेंडिंग ऑन उनकी लोकली क्या कॉन्टेक्स्ट है. कभी कभी हम लोग जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो लोग एक्चुअली फाइट करते हैं दूसरों के एक ही अधिकार के लिए, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं. उनको हम लोग सिखाते हैं कि कैसे लोगों को हेल्प करना चाहिए, कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे आप यूएन को भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं.
3: जब किसी भी देश पर या किसी गुट पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगता है तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद क्या होता है?
4: तो एक बार हमने सच्चाई एस्टैब्लिश कर ली कि एक जगह पे क्या हुआ, तो फिर जवाबदेही का टर्न है और वो काफ़ी रूप ले सकती है. जिस देश में ये क्रिम हुआ था वहाँ पे उसके कोर्ट्स और उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह वो हो नहीं सकता है. तो कभी कभी फिर हम लोग बोलते हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना पड़ेगा. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है एक जो नैदरलैंड्स में है, कभी कभी वो केसेस ले लेते हैं. पर हर देश में, काफ़ी देशों में एक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन. उसका मतलब ये है कि भले ही वो जो जुर्म हुआ था वो आपके देश में नहीं हुआ था, अगर जो परपेट्रेटर है, जो आदमी है जिसने ये किया था, अगर वो आपके देश में है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल उधर ही, उसको जवाबदेही उधर ही कर सकते हो. तो काफ़ी डिफरेंट वेज हैं, काफ़ी तरीके हैं टू इंश्योर जस्टिस.
3: पर क्या संयुक्त राष्ट्र के पास ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो जो भी निर्णय है उनको लागू कर सके, इन्फोर्स कर सके?
4: देखिए, इन्फोर्समेंट काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स लेती है. तो पहले हमारा मेन प्रिंसिपल है कि सच को एस्टैब्लिश करो, फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करो. और आप जानते हो कि आजकल ये बहुत मुश्किल चीज़ हो गई. अभी सोशल मीडिया में वीडियोस छप जाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन इतनी हो जाती है और फिर पता नहीं चलता है कि ये सच्चे वीडियोस हैं कि इनको कुछ किया गया है, डॉक्टर किया गया है, और लोग देख लेते हैं तो फिर वो व्हाट दे सी दे बिलीव. तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है एस्टैब्लिश द ट्रूथ, सच्चाई को आप एस्टैब्लिश कर दो. उसके बाद उसको अटेंशन दिलाओ इंटरनेशनल कम्युनिटी में. दैट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. उसी से काफ़ी बदल आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन गाज़ा, इसराइल बोलती है कि हमने इस हॉस्पिटल को अटैक किया, हस्पताल को अटैक किया, क्योंकि वहाँ पे हमास के मिलिटेंट्स थे. हमास वाले बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल मिलिटेंट्स नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स थे और इसराइल ने ऐसा किया. तो हम जाके पूछताछ करते हैं वहाँ पे हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे, समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि इसराइल जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो सेल्फ डिफेंस में ही कर रहे हैं, हम एक्टिवली अटैक नहीं कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल को हमने ठीक से एग्जामिन किया और हमने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स का, मतलब कुछ वेपन्स का था ही नहीं. और उस हॉस्पिटल को अटैक करके वहाँ पे जो लोग हैं इन द मिडल ऑफ अ वॉर, उनकी बस उनकी फिर एक्सेस ही नहीं थी किसी भी हस्पताल की, उनके पास एक्सेस नहीं थी. तो जो छोटी मोटी इलनेसेस भी होती हैं, किसको डायबिटीज़ है, किसको किडनी का प्रॉब्लम है, उनको अपनी दवाइयाँ नहीं मिलती है. तो जो टोल ऑफ द वॉर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हमने एस्टैब्लिश किया कि एक्चुअली वो टारगेट नहीं था. उसके बाद वो सच एस्टैब्लिश करने के बाद जो जवाबदेही होती है वो शुरू हो सकती है.
0: आप
2: मानव अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शम दासानी के साथ यूएन हिंदी न्यूज की अंशु शर्मा की विशेष बातचीत को सुन रहे थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में स्मरण दिलाया कि मानवीय अनुभवों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं तथा हर चीज की शुरुआत आत्मा से होती है। इसलिए मनुष्य स्मृति का सहारा ले और अपने यथार्थ अनुभवों को याद करे। अपने ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, मस्तिष्क को केवल डाटा एकत्र नहीं करना चाहिए, जैसा कि इन दिनों एल्गोरिदम हमसे कहीं अधिक तेजी से करते हैं, अपितु उसे अपने जिए हुए अनुभवों को याद करना चाहिए। इन अनुभवों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं जिन्हें सिर्फ मानवीय आत्मा ही पहचान सकती है और उनसे गहराई से जुड़ सकती है। हर चीज की शुरुआत आत्मा से होती है, इसलिए उसमें एक प्राण, एक गतिशीलता और एक सहभागिता का भाव जुड़ा होता है जो एक बार महसूस होने पर दिल में बस जाता है। संत पापा लियो 14वें 16 से 18 अक्टूबर तक रोम के साक्रो क्वोरे विश्वविद्यालय में द स्प्लेंडर ऑफ द ह्यूमन शीर्षक से आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संत पापा पॉल षष्ठम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए द स्प्लेंडर ऑफ द ह्यूमन अर्थात मानवीय वैभव, प्रजनन क्षमता की रक्षा और बांझपन का उपचार शीर्षक से रोम के साक्रो क्वोरे विश्वविद्यालय में मानव शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों पर विचार विमर्श हेतु उक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन शुक्रवार 16 अक्टूबर को रोम के सांता मरिया इन त्रस्पोंतीना पल्ली के गिरजाघर में बोलोनिया के महाधर्माध्यक्ष तथा इतालवी धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जूपी की अध्यक्षता में अर्पित ख्रीस्तियाग से शुरू होगा। तदुपरांत सम्मेलन के प्रतिभागी वैटिकन में संत पापा लियो 14वें से मुलाकात करेंगे। अपरान रोम के उक्त कैथलिक विश्वविद्यालय में सम्मेलन का पहला सत्र आरंभ होगा, जिसमें वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन कलीसियाई शिक्षा के अनुरूप प्रजनन की गरिमा और उसके सौंदर्य विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का कार्यक्रम 4 सत्रों में विभाजित है। चर्चित विषयों में शामिल है प्रजनन ज्ञान और वंध्यापन का उपचार संबंधी मानव शास्त्रीय और वैज्ञानिक पहलुओं को समझना, समाज और विज्ञान के बीच जीवन का प्रसार, गर्भ धारण से पहले स्वास्थ्य और वंध्यापन की रोकथाम, और साथ ही हाइपर टेक्नोलॉजी और फेंक दी जाने वाली संस्कृति के बीच इंसानियत की रक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के 81वें सत्र की तीसरी समिति की बैठक में राष्ट्र संघ में वैटिकन के प्रतिनिधि और परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टफी एल कसीस ने नस्लगत हिंसा और भेदभाव को खत्म करने की मांग की। गुरुवार 8 अक्टूबर को नस्लवाद, जातिगत भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता की समाप्ति शीर्षक के अंतर्गत आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की उक्त सभा में महाधर्माध्यक्ष ने कहा, कलीसिया की शिक्षाओं के मूल में यह विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के प्रतिरूप और उनकी समानता में रचा गया है और इसलिए हर किसी की गरिमा समान और अक्षुण है। उन्होंने कहा, नस्लवाद, जातिगत भेदभाव, ज़ेनोफोबिया अथवा विदेशियों के प्रति घृणा और इनसे जुड़ी असहिष्णुता मानवीय गरिमा और मानव परिवार की

एकता का प्रत्यक्ष अपमान है। इस संबंध में संत पापा लियो 14वें का आग्रह है कि समानता को नस्ल, रंग, वर्ग और पेशे के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बरकरार रखा जाना चाहिए। महाधर्माध्यक्ष एल कसीस ने याद दिलाया कि ईश प्रदत्त मानवीय गरिमा एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण के लिए बुनियादी है, जिसमें सभी की भलाई हासिल की जा सके। उन्होंने सचेत किया कि भौतिकतावादी और राष्ट्रवादी विचारधाराएं इन मूल्यों के खिलाफ हैं और मानव परिवार की एकता को हकीकत बनने से रोकती हैं। इस तथ्य पर उन्होंने दुख व्यक्त किया कि वर्तमान समाज में स्पष्ट दिखाई देती प्रगति के बावजूद नस्लवाद की बुराई अलग अलग रूपों और स्तरों पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नस्लगत भेदभाव इस गलत और घटिया सोच पर आधारित है कि कोई व्यक्ति जिसे केवल एक विशेषता तक सीमित कर दिया गया है दूसरे से श्रेष्ठ है। इस विषय में उन्होंने कहा, विशेष रूप से आप्रवासियों और शरणार्थियों के विरुद्ध बढ़ता अकारण भय और हर स्तर पर उनके विरुद्ध भेदभाव खतरनाक है। फिर डिजिटल क्षेत्र में बढ़ते भेदभाव और बहिष्करण के प्रति भी उन्होंने ध्यान आकर्षित कराते हुए सचेत किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नफरत और ध्रुवीकरण को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक असहिष्णुता के प्रति भी उन्होंने गहन चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के विरुद्ध पूर्वाग्रह पर आधारित घृणा का हरगिज बहिष्कार किया जाना चाहिए। रोम स्थित अंतोनियानुम परम धर्मपीठी विश्वविद्यालय में बुधवार 7 अक्टूबर को अंतरधार्मिक संवाद संबंधी परम धर्मपीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज कुवाकर्ड ने कहा कि युद्ध का क्रिस्तीय प्रत्युत्तर और एकमात्र शांति का मार्ग है भ्रातृत्व भाव। उन्होंने कहा कि शांति का निर्माण करने की क्षमता एक ऐसी मानवता के पास ही होती है जो एक साथ प्रार्थना करती, साथ चलती और सबसे पहले हथियार का परित्याग करती है। 27 अक्टूबर 1986 में इटली के असीसी नगर में संपन्न विश्व के धर्मों की सार्वभौमिक प्रार्थना सभा के स्मरणार्थ तथा संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र मनीफिका उमानिता से प्रेरित होकर असीसी की भावना में स्मृति और भविष्यवाणी के बीच शीर्षक से उक्त बैठक का आयोजन किया गया था। कार्डिनल कुवाकर्ड ने स्मरण दिलाया कि संत जॉन पॉल द्वितीय ने असीसी में प्रार्थना दिवस का आयोजन इसलिए चाहा था कि यह धरती शांति पुरुष संत फ्रांसिस की जन्म और कर्म भूमि थी। उन्होंने कहा कि संत फ्रांसिस के लिए शांति न तो कोई रणनीति थी और न ही कोई विचारधारा, बल्कि यह ईश्वर से मिलने वाला एक उपहार है जिसे हम उन सभी को अर्पित कर सकते हैं जिनसे हम मिलते हैं। उन्होंने याद किया कि असीसी में लोग प्रार्थना करने के लिए एक साथ आए थे, न कि एक साथ प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने का मतलब मतभेदों को मिटाना नहीं, इसका मतलब है हर कोई अपने अपने विश्वास और धार्मिक परंपराओं में जड़ीभूत रहते हुए यह समझे कि शांति एक ऐसा उपहार है जो हमारे पास नहीं है और जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि मानव अधिकार क्या है और ये क्यों अहम है? मानव अधिकार वे मूलभूत और जन्मजात अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल इंसान होने के कारण प्राप्त होते हैं, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, भाषा या राष्ट्र कोई भी हो। ये अधिकार किसी सरकार या कानून द्वारा नहीं दिए जाते, मनुष्य के जन्म के साथ ही वे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता, कोई भी सत्ता या सरकार इसे समाप्त नहीं कर सकती। सभी मानव अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक अधिकार को पूरा करने के लिए दूसरे का सहयोग जरूरी होता है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। समय और समाज की जरूरतों के साथ उनका दायरा बढ़ता है, जैसे डिजिटल युग में निजता का अधिकार। दुनिया भर में टकराव और युद्ध, इंसानों के बीच असमानता और बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच मानव अधिकारों की अहमियत पहले से कहीं अधिक हो गई है। लेकिन मानव अधिकार क्या है? वे हमारे दैनिक जीवन में किस तरह जुड़े हैं और वे समाज को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए क्यों आवश्यक है? जिनेवा स्थित यूएन मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना श्रमदासानी ने यूएन न्यूज की अंशु शर्मा के साथ एक विशेष बातचीत में उन्हीं बुनियादी सवालों के जवाबों पर रोशनी डालते हुए मानव अधिकारों की मूल अवधारणा, उनके महत्व और आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता को सरल शब्दों में समझाया।
3: रवीना, सबसे पहले ये बताइए कि मानवाधिकारों का मतलब क्या है? मानवाधिकार है क्या?
4: मानवाधिकार एक्चुअली सब कुछ है। रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए, इक्वालिटी स्कूल्स में, काम पे, डिसेबिलिटी राइट्स, कैसे लोगों को ऑब्स्टिकल्स नहीं हो लाइफ में, कि किसी बिल्डिंग में एंटर करना हो, कोई काम करना हो तो उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उनको कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो। इट इज़ ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। कोई अगर कोई जुर्म करता है तो उसको टॉर्चर नहीं किया जाए, अभी उसका भी हक है कि ही इज़ ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। टॉर्चर करने से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, इनफैक्ट आप वापस वो जो साइकिल होती है वायोलेशंस की, वो आप दोहरा रहे हो बार बार। तो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स सब कुछ है।
3: मानवाधिकार हर व्यक्ति के लिए हर जगह जी, उसको महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्यों महत्वपूर्ण है वो
4: मानवाधिकार? एक्चुअली अगर आपको याद होगा कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया गया था, उसकी ड्राफ्टिंग के टाइम पे हमारी एक थी हंसा मेहता, इंडियन फेमिनिस्ट, जिसने इंसिस्ट किया था कि उसका जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड फ्री एंड इक्वल, जो वो फ्रेज है, वो उन्होंने ही डिसाइड किया था कि उसको ऑल ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए, ऑल मेन नहीं होना चाहिए। एलेनोर रूजवेल्ट काफ़ी जो जिसने लीड किया था जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया गया था, उन्होंने बोला था नहीं रहने दो, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स टू पिक, हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को कन्विंस करना है, तो ये चीज़ रहने दो, हम लोग ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल से सेटिस्फाइड हैं। पर हंसा मेहता ने इंसिस्ट किया था कि ह्यूमन राइट्स आपको ठीक से प्रेजेंट करना है, ठीक से लिख के उसको स्पेसिफाई करना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तभी लोग पूछते हैं कि चलो ये सोशल इश्यूज हैं, इनको आप ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क में क्यों बोल रहे हो? और ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है जब कोई बोलता है कि ये मेरा अधिकार है। तो जैसे 2004 में जब सुनामी हुआ था साउथ एशिया में, तो मैं वहाँ पे गई थी, मैं नागापट्टनम में गई थी, और वहाँ पे काफ़ी चैरिटी वर्क चल रहा था, राइट? काफ़ी लोग सोचेंगे कि चैरिटी वर्क चल रहा है, लोगों जिसके जिनके घर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनको खाना प्रोवाइड करना है, उनको रोटी कपड़ा मकान. पर एक बहुत पावरफुल चीज़ थी, जब मैं एक कैंप में गई थी वहाँ पे लिखा था कि हर परिवार का अधिकार है इतने चावल, इतना आटा, इतनी दाल. दैट कम्प्लीटली चेंजेस द इक्वेशन, क्योंकि फिर लोग ऐसा नहीं है कि वो बेजार हैं, वो जाके कुछ मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं. नहीं, ये उनका अधिकार है, ये खाना, ये पानी, ये रहने की जगह उनका अधिकार है. और वो पूरी इक्वेशन को शिफ्ट कर देता है. तभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करें.
3: तो आप मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में काम करती हैं जिनेवा में. ये कार्यालय क्या करता है, क्या काम है उसका?
4: तो हम लोग 90+ कंट्रीज़ में हैं, एक्चुअली अभी 92 कंट्रीज़ में हैं. और वहाँ पे हम बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ काम करते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन द कंट्री. जैसे समझिए सूडान में अभी वहाँ पे वॉर चल रहा है, पर जब भी किसी जंग में दो पार्टीज होती हैं तो दो वर्जन्स ऑफ द ट्रूथ होते हैं, दो सच्चाइयाँ होती हैं. और हमारा जॉब है कि हम एक्चुअली क्या सच में हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करके और पूरी दुनिया को बताएं कि एक्चुअली ये हो रहा है, जाके डॉक्यूमेंट करके और सबको बताते हो कि क्या हो रहा है. एंड देयर इज नथिंग दैट एनीबॉडी कैन डू अबाउट इट. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब लोग सच्चाई समझेंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे वो लोग सच्चाई समझेंगे, तो फिर दैट कैन प्रोवोक एक्शन. फिर जाके दुनिया भर के लोग देखेंगे कि सूडान में ये हो रहा है, ये कभी नहीं होना चाहिए. वो अपने गवर्नमेंट्स को प्रेशर करेंगे, फिर गवर्नमेंट्स गेट इन्वॉल्व्ड एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी पेज अटेंशन टू सिचुएशंस ऑन द ग्राउंड.
3: पर ज़मीन पर जो लोग हैं उनकी रक्षा कैसे करते हैं आप इस सब में?
4: हर देश का अपना इशू है, तो डिपेंडिंग ऑन उनकी लोकली क्या कॉन्टेक्स्ट है. कभी कभी हम लोग जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो लोग एक्चुअली फ़ाइट करते हैं दूसरों के एक ही अधिकार के लिए, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं. उनको हम लोग सिखाते हैं कि कैसे लोगों को हेल्प करना चाहिए, कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे आप यूएन को भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं.
3: जब किसी भी देश पर या किसी गुट पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगता है तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद क्या होता है?
4: तो एक बार हमने सच्चाई एस्टैब्लिश कर ली कि एक जगह पर क्या हुआ, तो फिर जवाबदेही का टर्न है और वो काफ़ी रूप ले सकती है. जिस देश में ये हुआ था वहाँ पे उसके कोर्ट्स और उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह वो हो नहीं सकता है. तो कभी कभी फिर हम लोग बोलते हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना पड़ेगा. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है एक जो नेदरलैंड्स में है, कभी कभी वो केसेस ले लेते हैं. पर हर देश में, काफ़ी देशों में एक प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन. उसका मतलब ये है कि भले ही वो जो जुर्म हुआ था वो आपके देश में नहीं हुआ था, अगर जो पर्पेट्रेटर है, जो आदमी है जिसने ये किया था, अगर वो आपके देश में है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल उधर ही, उसको जवाबदेही उधर ही कर सकते हो. तो काफ़ी डिफरेंट वेज हैं, काफ़ी तरीके हैं टू इंश्योर जस्टिस.
3: पर क्या संयुक्त राष्ट्र के पास ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो जो भी निर्णय है उनको लागू कर सके, इन्फोर्स कर सके?
4: देखिए, इन्फोर्समेंट काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स लेती है. तो पहले हमारा मेन प्रिंसिपल है कि सच को एस्टैब्लिश करो, फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करो. और आप जानते हो कि आजकल ये बहुत मुश्किल चीज़ हो गई. अभी सोशल मीडिया में वीडियोस छप जाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन इतनी हो जाती है और फिर पता नहीं चलता है कि ये सच्चे वीडियोस हैं कि इनको कुछ किया गया है, डॉक्टर किया गया है. और लोग देख लेते हैं तो फिर वो व्हाट दे सी दे बिलीव. तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है एस्टैब्लिश द ट्रूथ, सच्चाई को आप एस्टैब्लिश कर दो. उसके बाद उसको अटेंशन दिलाओ इंटरनेशनल कम्युनिटी में. दैट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. उसी से काफ़ी बदल आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन गाज़ा, इसराइल बोलती है कि हमने इस हॉस्पिटल को अटैक किया, हस्पताल को अटैक किया, क्योंकि वहाँ पे हमास के मिलिटेंट्स थे. हमास वाले बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल मिलिटेंट्स नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स थे और इसराइल ने ऐसा किया. तो हम जाके पूछताछ करते हैं वहाँ पे, हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या. क्योंकि इसराइल जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो सेल्फ डिफेंस में ही कर रहे हैं, हम एक्टिवली अटैक नहीं कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल को हमने ठीक से एग्जामिन किया और हमने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स का, मतलब कुछ वेपन्स का था ही नहीं. और उस हॉस्पिटल को अटैक करके वहाँ पे जो लोग हैं इन द मिडल ऑफ अ वॉर, उनकी बस उनकी फिर एक्सेस ही नहीं थी किसी भी हस्पताल की, उनके पास एक्सेस नहीं थी. तो जो छोटी मोटी इलनेसेस भी होती हैं, किसको डायबिटीज़ है, किसको किडनी का प्रॉब्लम है, उनको अपनी दवाइयाँ नहीं मिलती है. तो जो द टोल ऑफ द वॉर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली. एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हमने एस्टैब्लिश किया कि एक्चुअली वो टारगेट नहीं था. उसके बाद वो सच एस्टैब्लिश करने के बाद जो जवाबदेही होती है वो शुरू हो सकती है.
0: आप
2: मानव अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शम दासानी के साथ यूएन हिंदी न्यूज की अंशु शर्मा की विशेष बातचीत को सुन रहे थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में स्मरण दिलाया कि मानवीय अनुभवों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं तथा हर चीज की शुरुआत आत्मा से होती है। इसलिए मनुष्य स्मृति का सहारा ले और अपने यथार्थ अनुभवों को याद करे। अपने ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, मस्तिष्क को केवल डाटा एकत्र नहीं करना चाहिए, जैसा कि इन दिनों एल्गोरिदम हमसे कहीं अधिक तेजी से करते हैं, अपितु उसे अपने जिए हुए अनुभवों को याद करना चाहिए। इन अनुभवों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं जिन्हें सिर्फ मानवीय आत्मा ही पहचान सकती है और उनसे गहराई से जुड़ सकती है। हर चीज की शुरुआत आत्मा से होती है, इसलिए उसमें एक प्राण, एक गतिशीलता और एक सहभागिता का भाव जुड़ा होता है जो एक बार महसूस होने पर दिल में बस जाता है। संत पापा लियो 14वें 16 से 18 अक्टूबर तक रोम के साक्रो क्वोरे विश्वविद्यालय में द स्प्लेंडर ऑफ द ह्यूमन शीर्षक से आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संत पापा पॉल षष्ठम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए द स्प्लेंडर ऑफ द ह्यूमन अर्थात मानवीय वैभव, प्रजनन क्षमता की रक्षा और बांझपन का उपचार शीर्षक से रोम के साक्रो क्वोरे विश्वविद्यालय में मानव शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों पर विचार विमर्श हेतु उक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन शुक्रवार 16 अक्टूबर को रोम के सांता मरिया इन त्रस्पोंतीना पल्ली के गिरजाघर में बोलोनिया के महाधर्माध्यक्ष तथा इतालवी धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जूपी की अध्यक्षता में अर्पित ख्रीस्तियाग से शुरू होगा। तदुपरांत सम्मेलन के प्रतिभागी वैटिकन में संत पापा लियो 14वें से मुलाकात करेंगे। अपरान रोम के उक्त कैथलिक विश्वविद्यालय में सम्मेलन का पहला सत्र आरंभ होगा, जिसमें वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन कलीसियाई शिक्षा के अनुरूप प्रजनन की गरिमा और उसके सौंदर्य विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का कार्यक्रम 4 सत्रों में विभाजित है। चर्चित विषयों में शामिल है प्रजनन ज्ञान और वंध्यापन का उपचार संबंधी मानव शास्त्रीय और वैज्ञानिक पहलुओं को समझना, समाज और विज्ञान के बीच जीवन का प्रसार, गर्भ धारण से पहले स्वास्थ्य और वंध्यापन की रोकथाम, और साथ ही हाइपर टेक्नोलॉजी और फेंक दी जाने वाली संस्कृति के बीच इंसानियत की रक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के 81वें सत्र की तीसरी समिति की बैठक में राष्ट्र संघ में वैटिकन के प्रतिनिधि और परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टफी एल कसीस ने नस्लगत हिंसा और भेदभाव को खत्म करने की मांग की। गुरुवार 8 अक्टूबर को नस्लवाद, जातिगत भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता की समाप्ति शीर्षक के अंतर्गत आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की उक्त सभा में महाधर्माध्यक्ष ने कहा, कलीसिया की शिक्षाओं के मूल में यह विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के प्रतिरूप और उनकी समानता में रचा गया है और इसलिए हर किसी की गरिमा समान और अक्षुण है। उन्होंने कहा, नस्लवाद, जातिगत भेदभाव, ज़ेनोफोबिया अथवा विदेशियों के प्रति घृणा और इनसे जुड़ी असहिष्णुता मानवीय गरिमा और मानव परिवार की एकता का प्रत्यक्ष अपमान है। इस संबंध में संत पापा लियो 14वें का आग्रह है कि समानता को नस्ल, रंग, वर्ग और पेशे के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बरकरार रखा जाना चाहिए। महाधर्माध्यक्ष एल कसीस ने याद दिलाया कि ईश प्रदत्त मानवीय गरिमा एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण के लिए बुनियादी है, जिसमें सभी की भलाई हासिल की जा सके। उन्होंने सचेत किया कि भौतिकतावादी और राष्ट्रवादी विचारधाराएं इन मूल्यों के खिलाफ हैं और मानव परिवार की एकता को हकीकत बनने से रोकती हैं। इस तथ्य पर उन्होंने दुख व्यक्त किया कि वर्तमान समाज में स्पष्ट दिखाई देती प्रगति के बावजूद नस्लवाद की बुराई अलग अलग रूपों और स्तरों पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नस्लगत भेदभाव इस गलत और घटिया सोच पर आधारित है कि कोई व्यक्ति जिसे केवल एक विशेषता तक सीमित कर दिया गया है दूसरे से श्रेष्ठ है। इस विषय में उन्होंने कहा, विशेष रूप से आप्रवासियों और शरणार्थियों के विरुद्ध बढ़ता अकारण भय और हर स्तर पर उनके विरुद्ध भेदभाव खतरनाक है।
फिर डिजिटल क्षेत्र में बढ़ते भेदभाव और बहिष्करण के प्रति भी उन्होंने ध्यान आकर्षित कराते हुए सचेत किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नफरत और ध्रुवीकरण को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक असहिष्णुता के प्रति भी उन्होंने गहन चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के विरुद्ध पूर्वाग्रह पर आधारित घृणा का हरगिज बहिष्कार किया जाना चाहिए। रोम स्थित अंतोनियानुम परम धर्मपीठी विश्वविद्यालय में बुधवार 7 अक्टूबर को अंतरधार्मिक संवाद संबंधी परम धर्मपीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज कुवाकर्ड ने कहा कि युद्ध का क्रिस्तीय प्रत्युत्तर और एकमात्र शांति का मार्ग है भ्रातृत्व भाव। उन्होंने कहा कि शांति का निर्माण करने की क्षमता एक ऐसी मानवता के पास ही होती है जो एक साथ प्रार्थना करती, साथ चलती और सबसे पहले हथियार का परित्याग करती है। 27 अक्टूबर 1986 में इटली के असीसी नगर में संपन्न विश्व के धर्मों की सार्वभौमिक प्रार्थना सभा के स्मरणार्थ तथा संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र मनीफिका उमानितास से प्रेरित होकर असीसी की भावना में स्मृति और भविष्यवाणी के बीच शीर्षक से उक्त बैठक का आयोजन किया गया था। कार्डिनल कुवाकर्ड ने स्मरण दिलाया कि संत जॉन पॉल द्वितीय ने असीसी में प्रार्थना दिवस का आयोजन इसलिए चाहा था कि यह धरती शांति पुरुष संत फ्रांसिस की जन्म और कर्म भूमि थी। उन्होंने कहा कि संत फ्रांसिस के लिए शांति न तो कोई रणनीति थी और न ही कोई विचारधारा, बल्कि यह ईश्वर से मिलने वाला एक उपहार है जिसे हम उन सभी को अर्पित कर सकते हैं जिनसे हम मिलते हैं। उन्होंने याद किया कि असीसी में लोग प्रार्थना करने के लिए एक साथ आए थे, न कि एक साथ प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने का मतलब मतभेदों को मिटाना नहीं, इसका मतलब है हर कोई अपने अपने विश्वास और धार्मिक परंपराओं में जड़ीभूत रहते हुए यह समझे कि शांति एक ऐसा उपहार है जो हमारे पास नहीं है और जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: पृथ्वी और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काथी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा।

0: जाती अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा कर।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव जीवन में भोज का एक महत्वपूर्ण अर्थ और स्थान है। मानव के जीवन में कोई भी भोज कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करता है, जिसमें हम आनंद और खुशी के भाव को पाते हैं। अतः कोई भी भोज का तात्पर्य हृदय के उद्गार मनोभावों को प्रकट करने से जुड़ा है, जहां हम उन लोगों को अपने इर्द गिर्द शामिल करने की चाह रखते हैं, जिनके संग हम प्रेमपूर्ण संबंध में जुड़े हुए हैं। इस भांति कोई भी भोज व्यक्ति को अपने प्रिय जनों और अपने हितैषियों के संग न केवल शारीरिक रूप में पोषित करता है, बल्कि यह दोनों पक्षों को भौतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप में प्रेम के गहरे सूत्र में पिरोता है, जहां मानव जीवन के आनंद का अनुभव करता है। श्रोताओं, वर्ष के 28वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम भोज को केंद्रीय विषय वस्तु स्वरूप पाते हैं, जिसके लिए ईश्वर की ओर से हमें भी निमंत्रण दिया जाता है। जीवनदाता ईश्वर हमें अपने पुत्र के भोज में शामिल होने को बुलाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि ईश्वर के भोज में शामिल होने का अर्थ हमारे लिए क्या है। ईश्वरीय पुत्र के भोज में शामिल होने हेतु हमसे किन किन बातों की तैयारी करने की मांग की जाती है। हम किस मनोभाव से पुत्र के विवाह भोज में अपने को शामिल करते हैं।
1: यीशु नेताओं और फरीसियों को दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए, और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में उस ईश्वरीय आनंद को अनुभव करने में मदद करे, जिसके लिए पिता हमें अपने पुत्र के भोज में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, नबी इसाईस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए ईश्वर के द्वारा एक भोज का प्रबंध किए जाने की बात कहता है। उस भोज पर वे सारी चीजें उपलब्ध होंगी जिसकी कामना हम किसी भोज में शरीक होने पर करते हैं, स्वादिष्ट भोजन, मांस, अंगूरी इत्यादि। यह हमारे लिए ईश्वर की उदारता को व्यक्त करता है, जहां वे दुनिया के सारे लोगों, सारी मानव जाति को अपने पास आने और अपने आनंद में, अपनी खुशी में सहभागी होने का निमंत्रण देते हैं। वैसे ही जैसे कि हम भोज देने पर अपने प्रिय जनों को अपनी खुशी में शामिल होने को बुलाते हैं, हमारे निमंत्रण में शायद हमारे कुछ स्वार्थ की भावनाएं होती होंगी, लेकिन ईश्वर के निमंत्रण में हम उनके निस्वार्थ भावना को पाते हैं। ईश्वर के निमंत्रण में हम उन्हें अपने पास आने वालों के जीवन से दुख और उनके सारे आंसुओं को पोंछता हुआ पाते हैं। वे उनके बीच से मृत्यु और उनके सारे शोक को दूर करने की बात कहते हैं। ईश्वर के पर्वत पर उनके पास आने वालों, उनके संग भोज में शामिल होने वालों को मुक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर के भोज में अपने को लाते हुए हम अपने को उन बातों से भरा और पोषित पाते हैं जिनकी चाह और आशा हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो दुनिया में हमारे भौतिक जीवन को सुगम बनाता है। श्रोताओं, इसे हम आज के दूसरे पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में सुनते हैं, जहां संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। ईश्वर की कृपा हमारे लिए सदैव उपलब्ध है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस रूप में ग्रहण करने को आते हैं। उनकी कृपा की बदौलत हम उन सारी चीजों को सहज ही पूरा करने के योग्य होते हैं जिन्हें हमें पूरा करने की मांग की जाती है। अतः हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें क्यों ना हो, हम अपने में कितने भी टूटे और बिखरे हुए क्यों ना हो, ईश्वर के सहचर्य जो सदैव हमारे संग बना रहता है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति और साहस से भर देता है। और यही कारण है कि ईश्वर हमें अपने पास अपने बेटे के भोज में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने स्वर्ग के राजा ईश्वर के पुत्र के विवाह भोज में अतिथियों को निमंत्रण दिए जाने की बात सुनी, लेकिन जिन्हें निमंत्रण दिया गया उन्होंने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि निमंत्रण देने वालों की बुराई की, उन्हें मारा पीटा और उनका अपमान भी किया। श्रोताओं, आज के सुसमाचार का संदर्भ यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि पिता ईश्वर हमें रोज दिन अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के जीवनदायी भोज में शामिल होने को बुलाते हैं। हम में से हर किसी को यह निमंत्रण हर दिन मिलता है, लेकिन अपने में खोए रहने के कारण हम उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। कितनी बार हम उनके निमंत्रण को पहचान नहीं पाते और सहज ही बहाना बनाते हुए उसे अस्वीकार करते हैं। हमें अपने में ही खोया रहना अच्छा लगता है, अतः हम अपने ही लेन देन में व्यस्त कर लेते हैं, जिसके कारण हम अपने को उन चीजों से वंचित पाते हैं जो हमें उनकी ओर से मिलने वाली होती है। वहीं बेटे के विवाह भोज में शामिल होना हमें अपने में कुछ तैयारी करने का आह्वान करता है, वैसे ही जैसे कि हम किसी भोज में साफ सुथरे और अच्छे वस्त्र पहनकर जाते हैं। यह हमें ईश्वर के मनोभावों को अपने में धारण करने का आह्वान करता है, जैसे कि नम्रता, करुणा, प्रेम के भाव जो हमारे दैनिक जीवन के हमारे कार्यों और व्यवहार में झलकता है। आइए हम स्वयं पुत्र यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने भोज में सहभागी होने के रहस्य को जानने और समझने में मदद करें, जिससे हम उनकी चाह और योजना के अनुरूप अपने को तैयार करते हुए उनके पास आ सकें, जो हमें भोज में सहभागी होने की सच्ची खुशी और आनंद से भर देता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ग्रीक मेलकाइट धर्म सभा के धर्माध्यक्षों से मुलाकात करते हुए पोप लियो 14वें ने उन्हें मेल मिलाप के गवाह बनने और हिंसा से प्रभावित भूमि में साम्य के बीज के रूप में सेवा हेतु आमंत्रित किया। पोप लियो 14वें ने शनिवार को अंतियो के ग्रीक मेलकाइट कलीसिया के धर्माध्यक्षों की धर्म सभा के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने याद दिलाया कि अंतियोक में ही यीशु ख्रिस्त के शिष्यों को पहली बार ख्रिस्ते कहा गया था और कहा कि हमें आज भी अपना जीवन इसी तरह जीने के लिए बुलाया गया है जो हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति का सबूत है। उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा, आप विश्वास को सिर्फ अपने मन में नहीं रखते बल्कि इसे अपने दिल में उतरने देते हैं। आत्मा से प्रेरित होकर भूखों के साथ खाना बांटते, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल करते, दुखियों का साथ देते और उन्हें सांत्वना देते हैं। कलीसिया को एक रोशनी की किरण ख्रिस्त की ज्योति बनने देते हैं, खासकर इस मुश्किल समय में। पोप ने याद किया कि कई इलाके जहां ग्रीक मेलकाइट कलीसिया मौजूद है वे युद्ध, अशांति, धार्मिक कट्टरता एवं आर्थिक तंगी से घिरे हैं। उनकी मुश्किलों और ख्रिस्त की तरह बनने की चाहत के बीच पोप ने ग्रीक मेलकाइट कार्तिक विश्वासियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया एवं पूरी कार्तिक कलीसिया की एकजुटता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, मैं खास रूप से उन जख्मों और मुश्किलों के बारे सोचता हूँ जिनका आप सामना करते हैं, जो आपके कई विश्वासियों को दूर देशों की यात्रा करने, काम खोजने, खतरों और कभी कभी जुल्म से बचने और अपने परिवारों की सुरक्षित भरण पोषण हेतु प्रेरित करती है। पोप ने उनका आह्वान करते हुए कहा, आपकी कलीसिया का एक बड़ा आह्वान है लड़ाई से तबाह देशों में मेल मिलाप और शांति के गवाह बनना। आप हिंसा से जख्मी देशों में मेल मिलाप के बीच हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीक मेलकाइट सिनेट मेल मिलाप के रखवाले के रूप में काम करता है जो विश्वासियों को एकजुटता के लिए कोशिश करने हेतु मदद करता है ताकि सभी लोग इसमें ख्रिस्त को पहचान सकें। और उन्हें सावधान करते हुए कहा, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम दूसरों से ऊपर उठने, सेवा के बजाय सत्ता, पारदर्शिता और ईमानदारी के बजाय फायदा और प्रेरिताई की देखभाल के बजाय व्यक्तिगत सफलता पाने के लालच में ना पड़ें। इस बात पर गौर करते हुए कि पुरोहित साक्ष्य देने की बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, उन्होंने कहा कि जब गुस्सा और डर का एहसास होता है, जो एक दर्द भरा पल है, हम इसी में प्यार दिखाने की कोशिश करके अपने विश्वास एवं सुसमाचार को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, हमने पूरे इतिहास में देखा है कि हम जिन मुश्किलों का सामना करते हैं, चाहे वह शहादत हो या अपने पड़ोसियों के लिए प्यार से किए गए छोटे मोटे त्याग, हमें अपने विश्वास को इस तरह दिखाने का मौका देते हैं उन लोगों के दिलों में गूंजता है जो सच्ची शांति चाहते हैं। अंत में संत पापा ने मध्य पूर्व में कार्तिक शिक्षा का समर्थन करने की वैटिकन की इच्छा जाहिर की और सीरिया, लेबनान एवं इराक में विश्वासियों के लिए उपलब्ध स्कॉलरशिप के लिए अपने समर्थन को याद किया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद युवाओं का समर्थन करना है ताकि ख्रिस्ते परिवारों को मध्य पूर्व में रहने और ख्रिस्ते पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक मदद मिल सके। पोप लियो 14वें ने महाधर्माध्यक्ष विक्टोरियो फ्रांचेस्को वियोला ओएफएम को वैटिकन में संत पेत्रस महागिरजाघर के महापुरोहित, वैटिकन सिटी में पोप के विकर जनरल और संत पेत्रस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया। पोप ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज में इस नियुक्ति की घोषणा की। महाधर्माध्यक्ष वियोला पहले दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुशासन के लिए गठित विभाग के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। 4 अक्टूबर 1965 को इटली के वियेला में जन्मे महाधर्माध्यक्ष ने 1991 में फ्रायर्स माइनर में मन्नत ग्रहण किया था और 1993 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। उन्होंने रोम के संत अनसेल्मो परमधम पीठे धर्म विधिक इंस्टीट्यूट से सेक्रेट लिटर्जी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और 2021 में विभाग के सचिव बनने से पहले वे 2014 में तोर्तोना के धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए थे। पोप लियो 14वें ने कार्तिक कलीसिया में मौत की सजा का बहिष्कार करने की बात को पुनः दोहराया है और याद दिलाया है कि आम हित को बिना मौत की सजा दिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
पोप लियो चौथवे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कातिक कलीसिया मौत की सजा को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि यह मानव की पवित्रता और गरिमा पर हमला है। शनिवार को मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस पर प्रकाशित एक पोस्ट में पोप ने कहा कि मौत की सजा पर भरोसा किए बिना न्याय को बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपराधियों को असरदार तरीके से हिरासत में लिया जा सकता है, जबकि दोषियों को छुटकारे की संभावना भी दी जा सकती है। अमेरिका में सार्वजनिक फांसी पर कार्डिनल परोलिन ने कहा है कि मौत को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। रोम में जॉन हेनरी न्यूमन पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने अमेरिका में निदाल हसन की फांसी का लाइव प्रसारण करने की योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मौत को तमाशा बनाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, यह सच में समझ से बाहर है कि आज के जमाने में कोई इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहेगा। मुझे नहीं पता कि किस मकसद से ऐसा किया जा रहा है। मौत को तमाशा बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कोई कितना भी दोषी क्यों ना हो, दूसरे तरीके भी हैं। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने यह टिप्पणी पेंटागन के उस फैसले पर की है जिसमें 2009 के फोर्ट हुड हत्याकांड के दोषी पूर्व आर्मी मेजर निदाल हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा फांसी देने का लाइव प्रसारण किया जाना है। कार्डिनल ने दोहराया, कलीसिया का दृष्टिकोण मौत की सजा के पूरी तरह खिलाफ है। यह मानव गरिमा के विरुद्ध है और यह निवारक का काम नहीं करता। इस बीच कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले कार्डिनल मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वे 92 वर्षीय कार्डिनल जुआनी बत्तीस्ता रे की जगह लेंगे। सुसमाचार प्रचार विभाग में प्रथम सुसमाचार प्रचार और नए स्थानीय कलीसियाओं के अनुभाग के प्रो प्रीफेक्ट कार्डिनल तागले कार्डिनल मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। दुनिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक कार्डिनल मंडल का नेतृत्व करीब 7 साल करने के बाद 92 वर्षीय कार्डिनल जुआनी बत्तीस्ता रे डीन पद छोड़ रहे हैं। उनकी जगह 69 वर्षीय फिलिपिनी कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले लेंगे। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष पद को पोप फ्रांसिस ने 2019 में मोतु प्रोप्रियो एक नवाचार के माध्यम से शुरू किया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: कोई भी भोज का तात्पर्य हृदय के उद्गार मनोभावों को प्रकट करने से जुड़ा है, जहां हम उन लोगों को अपने इर्द गिर्द शामिल करने की चाह रखते हैं जिनके संग हम प्रेमपूर्ण संबंध में जुड़े हुए हैं। इस भांति कोई भी भोज व्यक्ति को अपने प्रिय जनों और अपने हितैषियों के संग न केवल शारीरिक रूप में पोषित करता है, बल्कि यह दोनों पक्षों को भौतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप में प्रेम के गहरे सूत्र में पिरोता है, जहां मानव जीवन के आनंद का अनुभव करता है। श्रोताओं, वर्ष के 28वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम भोज को केंद्रीय विषय वस्तु स्वरूप पाते हैं, जिसके लिए ईश्वर की ओर से हमें भी निमंत्रण दिया जाता है। जीवन दाता ईश्वर हमें अपने पुत्र के भोज में शामिल होने को बुलाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि ईश्वर के भोज में शामिल होने का अर्थ हमारे लिए क्या है। ईश्वरीय पुत्र के भोज में शामिल होने हेतु हमसे किन किन बातों की तैयारी करने की मांग की जाती है। हम किस मनोभाव से पुत्र के विवाह भोज में अपने को शामिल करते हैं।
1: यीशु नेताओं और फरीसियों को दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए, और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में उस ईश्वरीय आनंद को अनुभव करने में मदद करे, जिसके लिए पिता हमें अपने पुत्र के भोज में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, नबी इसाईस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए ईश्वर के द्वारा एक भोज का प्रबंध किए जाने की बात कहता है। उस भोज पर वे सारी चीजें उपलब्ध होंगी जिसकी कामना हम किसी भोज में शरीक होने पर करते हैं, स्वादिष्ट भोजन, मांस, अंगूरी इत्यादि। यह हमारे लिए ईश्वर की उदारता को व्यक्त करता है, जहां वे दुनिया के सारे लोगों, सारी मानव जाति को अपने पास आने और अपने आनंद में, अपनी खुशी में सहभागी होने का निमंत्रण देते हैं। वैसे ही जैसे कि हम भोज देने पर अपने प्रिय जनों को अपनी खुशी में शामिल होने को बुलाते हैं, हमारे निमंत्रण में शायद हमारे कुछ स्वार्थ की भावनाएं होती होंगी, लेकिन ईश्वर के निमंत्रण में हम उनके निस्वार्थ भावना को पाते हैं। ईश्वर के निमंत्रण में हम उन्हें अपने पास आने वालों के जीवन से दुख और उनके सारे आंसुओं को पोंछता हुआ पाते हैं। वे उनके बीच से मृत्यु और उनके सारे शोक को दूर करने की बात कहते हैं। ईश्वर के पर्वत पर उनके पास आने वालों, उनके संग भोज में शामिल होने वालों को मुक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर के

भोज में अपने को लाते हुए हम अपने को उन बातों से भरा और पोषित पाते हैं जिनकी चाह और आशा हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो दुनिया में हमारे भौतिक जीवन को सुगम बनाता है। श्रोताओं, इसे हम आज के दूसरे पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में सुनते हैं, जहां संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। ईश्वर की कृपा हमारे लिए सदैव उपलब्ध है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस रूप में ग्रहण करने को आते हैं। उनकी कृपा की बदौलत हम उन सारी चीजों को सहज ही पूरा करने के योग्य होते हैं जिन्हें हमें पूरा करने की मांग की जाती है। अतः हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें क्यों ना हो, हम अपने में कितने भी टूटे और बिखरे हुए क्यों ना हो, ईश्वर के सहचर्य जो सदैव हमारे संग बना रहता है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति और साहस से भर देता है। और यही कारण है कि ईश्वर हमें अपने पास अपने बेटे के भोज में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने स्वर्ग के राजा ईश्वर के पुत्र के विवाह भोज में अतिथियों को निमंत्रण दिए जाने की बात सुनी, लेकिन जिन्हें निमंत्रण दिया गया उन्होंने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि निमंत्रण देने वालों की बुराई की, उन्हें मारा पीटा और उनका अपमान भी किया। श्रोताओं, आज के सुसमाचार का संदर्भ यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि पिता ईश्वर हमें रोज दिन अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के जीवनदायी भोज में शामिल होने को बुलाते हैं। हम में से हर किसी को यह निमंत्रण हर दिन मिलता है, लेकिन अपने में खोए रहने के कारण हम उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। कितनी बार हम उनके निमंत्रण को पहचान नहीं पाते और सहज ही बहाना बनाते हुए उसे अस्वीकार करते हैं। हमें अपने में ही खोया रहना अच्छा लगता है, अतः हम अपने ही लेन देन में व्यस्त कर लेते हैं, जिसके कारण हम अपने को उन चीजों से वंचित पाते हैं जो हमें उनकी ओर से मिलने वाली होती है। वहीं बेटे के विवाह भोज में शामिल होना हमें अपने में कुछ तैयारी करने का आह्वान करता है, वैसे ही जैसे कि हम किसी भोज में साफ सुथरे और अच्छे वस्त्र पहनकर जाते हैं। यह हमें ईश्वर के मनोभावों को अपने में धारण करने का आह्वान करता है, जैसे कि नम्रता, करुणा, प्रेम के भाव जो हमारे दैनिक जीवन के हमारे कार्यों और व्यवहार में झलकता है। आइए हम स्वयं पुत्र यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने भोज में सहभागी होने के रहस्य को जानने और समझने में मदद करें, जिससे हम उनकी चाह और योजना के अनुरूप अपने को तैयार करते हुए उनके पास आ सकें, जो हमें भोज में सहभागी होने की सच्ची खुशी और आनंद से भर देता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ग्रीक मेलकाइट धर्म सभा के धर्माध्यक्षों से मुलाकात करते हुए पोप लियो 14वें ने उन्हें मेल मिलाप के गवाह बनने और हिंसा से प्रभावित भूमि में साम्य के बीज के रूप में सेवा हेतु आमंत्रित किया। पोप लियो 14वें ने शनिवार को अंतियोक के ग्रीक मेलकाइट कलीसिया के धर्माध्यक्षों की धर्म सभा के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने याद दिलाया कि अंतियोक में ही यीशु ख्रिस्त के शिष्यों को पहली बार ख्रिस्ते कहा गया था और कहा कि हमें आज भी अपना जीवन इसी तरह जीने के लिए बुलाया गया है जो हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति का सबूत है। उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा, आप विश्वास को सिर्फ अपने मन में नहीं रखते बल्कि इसे अपने दिल में उतरने देते हैं। आत्मा से प्रेरित होकर भूखों के साथ खाना बांटते, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल करते, दुखियों का साथ देते और उन्हें सांत्वना देते हैं। कलीसिया को एक रोशनी की किरण ख्रिस्त की ज्योति बनने देते हैं, खासकर इस मुश्किल समय में। पोप ने याद किया कि कई इलाके जहां ग्रीक मेलकाइट कलीसिया मौजूद है वे युद्ध, अशांति, धार्मिक कट्टरता एवं आर्थिक तंगी से घिरे हैं। उनकी मुश्किलों और ख्रिस्त की तरह बनने की चाहत के बीच पोप ने ग्रीक मेलकाइट कार्तिक विश्वासियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया एवं पूरी कार्तिक कलीसिया की एकजुटता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, मैं खास रूप से उन जख्मों और मुश्किलों के बारे सोचता हूँ जिनका आप सामना करते हैं, जो आपके कई विश्वासियों को दूर देशों की यात्रा करने, काम खोजने, खतरों और कभी कभी जुल्म से बचने और अपने परिवारों की सुरक्षित भरण पोषण हेतु प्रेरित करती है। पोप ने उनका आह्वान करते हुए कहा, आपकी कलीसिया का एक बड़ा आह्वान है लड़ाई से तबाह देशों में मेल मिलाप और शांति के गवाह बनना। आप हिंसा से जख्मी देशों में मेल मिलाप के बीच हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीक मेलकाइट सिनेट मेल मिलाप के रखवाले के रूप में काम करता है जो विश्वासियों को एकजुटता के लिए कोशिश करने हेतु मदद करता है ताकि सभी लोग इसमें ख्रिस्त को पहचान सकें। और उन्हें सावधान करते हुए कहा, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम दूसरों से ऊपर उठने, सेवा के बजाय सत्ता, पारदर्शिता और ईमानदारी के बजाय फायदा और प्रेरिताई की देखभाल के बजाय व्यक्तिगत सफलता पाने के लालच में ना पड़ें। इस बात पर गौर करते हुए कि पुरोहित साक्ष्य देने की बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, उन्होंने कहा कि जब गुस्सा और डर का एहसास होता है, जो एक दर्द भरा पल है, हम इसी में प्यार दिखाने की कोशिश करके अपने विश्वास एवं सुसमाचार को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, हमने पूरे इतिहास में देखा है कि हम जिन मुश्किलों का सामना करते हैं, चाहे वह शहादत हो या अपने पड़ोसियों के लिए प्यार से किए गए छोटे मोटे त्याग, हमें अपने विश्वास को इस तरह दिखाने का मौका देते हैं उन लोगों के दिलों में गूंजता है जो सच्ची शांति चाहते हैं। अंत में संत पापा ने मध्य पूर्व में कार्तिक शिक्षा का समर्थन करने की वैटिकन की इच्छा जाहिर की और सीरिया, लेबनान एवं इराक में विश्वासियों के लिए उपलब्ध स्कॉलरशिप के लिए अपने समर्थन को याद किया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद युवाओं का समर्थन करना है ताकि ख्रिस्ते परिवारों को मध्य पूर्व में रहने और ख्रिस्ते पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक मदद मिल सके। पोप लियो 14वें ने महाधर्माध्यक्ष विक्टोरियो फ्रांचेस्को वियोला ओएफएम को वैटिकन में संत पेत्रस महागिरजाघर के महापुरोहित, वैटिकन सिटी में पोप के विकर जनरल और संत पेत्रस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया। पोप ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज में इस नियुक्ति की घोषणा की। महाधर्माध्यक्ष वियोला पहले दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुशासन के लिए गठित विभाग के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। 4 अक्टूबर 1965 को इटली के वियेला में जन्मे महाधर्माध्यक्ष ने 1991 में फ्रायर्स माइनर में मन्नत ग्रहण किया था और 1993 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। उन्होंने रोम के संत अनसेल्मो परमधम पीठे धर्म विधिक इंस्टीट्यूट से सेक्रेट लिटर्जी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और 2021 में विभाग के सचिव बनने से पहले वे 2014 में तोर्तोना के धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए थे। पोप लियो 14वें ने कार्तिक कलीसिया में मौत की सजा का बहिष्कार करने की बात को पुनः दोहराया है और याद दिलाया है कि आम हित को बिना मौत की सजा दिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
पोप लियो चौधरी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कात्य कलीसिया मौत की सजा को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि यह मानव की पवित्रता और गरिमा पर हमला है। शनिवार को मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस पर प्रकाशित एक पोस्ट में पोप ने कहा कि मौत की सजा पर भरोसा किए बिना न्याय को बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपराधियों को असरदार तरीके से हिरासत में लिया जा सकता है, जबकि दोषियों को छुटकारे की संभावना भी दी जा सकती है। अमेरिका में सार्वजनिक फांसी पर कार्डिनल परोलिन ने कहा है कि मौत को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। रोम में जॉन हेनरी न्यूमन पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने अमेरिका में निदाल हसन की फांसी का लाइव प्रसारण करने की योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मौत को तमाशा बनाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, यह सच में समझ से बाहर है कि आज के जमाने में कोई इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहेगा। मुझे नहीं पता कि किस मकसद से ऐसा किया जा रहा है। मौत को तमाशा बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कोई कितना भी दोषी क्यों ना हो, दूसरे तरीके भी हैं। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने यह टिप्पणी पेंटागन के उस फैसले पर की है जिसमें 2009 के फोर्ट हुड हत्याकांड के दोषी पूर्व आर्मी मेजर निदाल हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा फांसी देने का लाइव प्रसारण किया जाना है। कार्डिनल ने दोहराया, कलीसिया का दृष्टिकोण मौत की सजा के पूरी तरह खिलाफ है। यह मानव गरिमा के विरुद्ध है और यह निवारक का काम नहीं करता। इस बीच कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले कार्डिनल मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वे 92 वर्षीय कार्डिनल जुआनी बत्तीस्ता रे की जगह लेंगे। सुसमाचार प्रचार विभाग में प्रथम सुसमाचार प्रचार और नई स्थानीय कलीसियाओं के अनुभाग के प्रो प्रीफेक्ट कार्डिनल तागले कार्डिनल मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। दुनिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक कार्डिनल मंडल का नेतृत्व करीब 7 साल करने के बाद 92 वर्षीय कार्डिनल जुआनी बत्तीस्ता रे डीन पद छोड़ रहे हैं। उनकी जगह 69 वर्षीय फिलिपिनी कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले लेंगे। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष पद को पोप फ्रांसिस ने 2019 में मोतु प्रोप्रियो एक नवाचार के माध्यम से शुरू किया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।